राजा लठायाला दिल दुखात है, भाई दिल तो उपाशी रात है। क्या लठायाला दिल दुखात है, भाई दिल तो उपाशी रात है। दिल हकलुन मागारी ये ते काय बोलत नाय काय मागत नाय जीव लावत मालकावरी जीव

हिल पर हिला तुझे कप्पा लीला टीला आगो हिल हिल पर हिला तुझे कप्पा लीला टीला तुझे कप्पा लीला टीला तुझे कप्पा लीला टीला गो फैशन मराठी सोबत

0: नमस्कार, मैं नाइकवाड़ी नगर तालुका मोहोड़ जिला सोलापुर से सैपन शेख बोल रहा हूँ। मैडम, आज मैंने आपको किसी फरमाइश के लिए वॉइस नहीं डाला है, क्योंकि मैं सिर्फ फीडबैक देने के लिए वॉइस डाल रहा हूँ, आज भेज रहा हूँ, तो इसे कृपया शामिल कर लीजिए। जिंदगी इस थीम को लेकर जो पेटे सर ने जो स्वरबहार प्रोग्राम पेश किया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही दिल को छू गया। और आपने जो बिग स्टार एसपीजी के ऊपर जो किया था, वो तो मुझे बहुत इतना एक नंबर लग गया, मतलब बहुत ही बढ़िया लगा। एसपी बाल सुब्रमण्यम पर जो आपने बिग स्टार शो किया, मुझे और कुबीर जी को भी बहुत अच्छा लगा था वो बिग स्टार शो। और उसी तरीके से जो पेटे सर ने जो और एक स्वरबहार प्रोग्राम पेश किया था इंतज़ार इस थीम को लेकर, वो भी हमें बहुत अच्छा लगा, काफ़ी दिल को छू गया। इंतज़ार थीम से जो गाने चुने थे बहुत पसंद आए, और उतना ही बेसब्री से इंतज़ार हम पेटे सर का कर रहे हैं, और पता नहीं हमारी ये इंतज़ार की घड़ियां कब ख़त्म होगी। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द पेटे सर आएंगे और हमारे लिए वो लाइव शो पेश करेंगे, ऐसे उम्मीद करते हैं। और फिर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप भी लाजवाब शो कर रहे हो। व्हाट्सएप पर मैं कल का बहुत बढ़िया हो गया था आपका, बहुत हमें पसंद आया डायलॉग, जो श्रोताओं को कहने का मौका दिया था आपने, और मेरे भी कुछ डायलॉग थे उस शो में, तो बहुत अच्छा लगा। और ऐसी नई नई थीम को लेकर आप करते रहिए शो, धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच सैफन शेख सर, आम्ही देखील वाट पाहतोय कधी पेठे सर येतील म्हणून, तर नक्कीच लवकर येतील अशी आशा आहे। तर ऐकूयात जो आपले श्रोते आहेत ढेरे पाटील सर यांची व्हॉट्सअप फरमाइश।

मैं एनी। मम्मा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है, मैं उनकी दिल की धड़कन हूँ जिसे वो सुन नहीं सकते। मैं उनकी पहचान हूँ, उनकी आवाज़ हूँ। हमारी छोटी सी दुनिया है सिर्फ तीनों की, लेकिन मैं आसमान को छूना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। आवाज़ और खामोशी टकराते गए, फिर भी सपने जिंदा हैं। है ना ये नामुमकिन सपना, लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना हो।

ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाए।

कसम तोड़ेंगे इसका गुरूर हम। खंभे जैसी खड़ी है लड़की है या छड़ी है, शोला है फुलझड़ी है, पट्टा फेंकी लड़ी है।

0: जीना तो चाहता हूँ लेकिन प्यार में।
1: तो फिर मरना चाहते होगे?
0: हाँ लेकिन वो भी प्यार में।
1: अच्छा।

तेरी बेटी क्या चाहती है और तू उसे क्या दे रहा है। तू बाप है या मेरा व्यापारी है? ये तेरी बेटी है बेईमान, ये नोटों की कोई गड्डी नहीं है जिसे तू सुधीर भाई के काले धंधों में लगाने की सोच रहा है। क्या बेटी के सुख की कोई अहमियत नहीं? जरा देख, ये दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। ये फूल से बच्चे तो सुधीर भाई को ललकार सकते हैं, एक तू है जो अपनी जान बचाए खड़ा है।

0: तो देखने दो,
1: जल भी रहे।
0: अरे तो चल ले तो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हट जाए
0: हो जाए।

0: अच्छा,
1: अरे हाँ वो चोर की शक्ल है गोरी।
0: तो क्या हुआ?
1: हो गया मिलना बहुत जरूरी।
0: चल पगली,
1: फिर सुनो तो आगे हमारी दिल की मजबूरी। तो वो जो मेरे करीब आया,
0: ओहो
1: मेरे तन पे पड़ा जो साया।
0: फिर क्या हुआ?
1: यूं समझो ना गले लगाया।
0: ची ची ची।

0: है पसीना।
1: बाप रे,
0: कल मैंने देखी अजब हसीना। प्यार में उसके धड़के मेरा दिल जलता है सीना, धक धक धक। पास वो आई बड़ी अदा से, बोली क्यों हो खफा खफा से।
1: हाय मर जाऊं,
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे,
1: क्यों नहीं।
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार तो निभाओगे?
0: निभाऊंगा।

0: पहले जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई,
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।

0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूं। यहां आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? Yes, 1, 2, 3, 4. La la la la la la la. बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया. Musicians, आप लोग मत बजाइए. Ready, 1, 2, 3, 4. La.